0: CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg, an Evanoff communication station.
1: The following is a paid program. The views and opinions do not represent those of CKJS or its advertisers.
2: संगीत
3: संगीत
4: संगीत रूदी खुराक है,
2: आत्मा दी आवाज है,
4: कुदरत दा वरदान है
2: और प्यार दी जुबान है।
4: जिंदगी जिंदगी
2: जिंदगी प्यार है,
4: जिंदगी सांझ है, खिमा है,
2: जिंदगी एक रंगमंच भी है।
4: इस रंगमंच ते हाजिर है वतन दी मिट्टी दी महक ते दिलां दी प्रीत नाल लबरेज
2: कल्चर ऑफ पंजाब।
4: कल्चर ऑफ पंजाब
5: मैंने किसी जर्नल में ये कोट पढ़ा था कि जब एक दिन मौत आएगी तो किसी और को मेरी जगह नहीं, मुझे ही ये दुनिया छोड़नी है। यानी मेरी मौत आएगी तो मुझे ही मरना है, तो फिर जब तक जिंदा हूँ तब तक उस तरह क्यों ना जीऊं जैसे मेरा मन चाहता है। नमस्कार, आदाब सामीन। यकीनन हर इंसान को हक है अपनी जिंदगी को अपनी तरह से जीने का, है ना? फिर क्यों हम लोग जज बनकर बैठे रहते हैं, वर्डिक्ट और जजमेंट्स पास करते रहते हैं? चले इसके बारे में आज बात करूंगी मैं प्रीत आपके अपने शो में, और शुरुआत करती हूँ बॉब मार्ले द्वारा लिखी बात के साथ। बॉब मार्ले जमैकन सिंगर, सॉन्ग राइटर, एक्टिविस्ट थे। अपनी किताब लिसन टू बॉब मार्ले द मैन द म्यूजिक द रेवोल्यूशन में उन्होंने लिखा है कि आप कौन हैं दूसरों की जिंदगी को जज करने वाले। मैं जानता हूं कि मैं परफेक्ट नहीं हूं और ना ही ऐसी कोई हसरत रखता हूं टू बी वन, पर मुझ पर एक उंगली उठाने से पहले ये याद जरूर रखें कि बाकी की सब उंगलियां आपकी ओर पॉइंट कर रही होंगी। और हाँ, ये भी जरूर मेक श्योर करें जब आप मेरी तरफ पॉइंट करें, मेरी जिंदगी की तरफ पॉइंट करें, कि उस टाइम पर आपके खुद के हाथ साफ और क्लीन हो। चले आगे बढ़ते हैं अब और बात करते हैं आज की तारीख की और हिस्ट्री में इसकी अहमियत की। आज यानी 15 मई 1718 को लंदन के एक लॉयर जेम्स पकल ने पेटेंट की दुनिया की पहली मशीन गन। आज ही की तारीख को 1925 में पहले कम्युनिस्ट न्यूज़पेपर एल इंसानिया की स्थापना हुई थी। 15 मई 1940 में मैकडोनल्ड्स ने अपना पहला रेस्टोरेंट खोला था कैलिफोर्निया में। इसके अलावा आज बर्थ एनिवर्सरी है इंडियन फिलोसोफर और ऑथर दबेंद्रनाथ टैगोर की। दबेंद्रनाथ ठाकुर रिलीजियस रिफॉर्मर थे एंड वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द ब्रह्म रिलीजन। साथ ही साथ उन्होंने मास्टरी की हुई थी उपनिषद्स की। साथ ही साथ आज बर्थ एनिवर्सरी है लुधियाना में जन्मे इंडियन रेवोल्यूशनरी सुखदेव थापर की, जिन्हें उनके कंपेनियंस भगत सिंह और राजगुरु के साथ 23 मार्च 1931 को हैंग कर दिया गया था एंड द बॉडीज वर सीक्रेटली क्रिमेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द सतलुज रिवर। इसके अलावा आज यानी 15 मई को दुनिया भर में मनाया जाता है एज इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। साथ ही साथ आज जन्मदिन है बेहद खूबसूरत, बेहद टैलेंटेड बॉलीवुड अदाकारा का, जिन्होंने फिल्मों में कदम रखा फिल्म अबोध के साथ 1984 में और वाइडर रिकॉग्निशन मिली फिल्म तेजाब के साथ। आई एम वेरी श्योर आप पहचान चुके होंगे कि मैं बात कर रही हूँ दी धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित नेने की, हु सेलिब्रेट्स हर 49th बर्थडे टुडे, दैट इज ऑन द

0: कल्चर ऑफ पंजाब ट्यून इन करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: खामोश रात है, साहिलों का साथ है, कोई दिल के करीब तो किसी के दिल पास है। सफर तन्हा है, फिर भी दिल में कई जज्बात हैं। कभी खुशियों की महफिल, कभी गम की बरसात है। यही है जिंदगी की हकीकत कि कहीं महकती सुबह तो कहीं अंधेरी रात है। वेल दैट्स वेरी ट्रू, क्योंकि कभी भी जिंदगी एक सी नहीं रहती। उतार चढ़ाव, दुख सुख आते ही रहते हैं, चाहे हम इनसे कितना भी भागने की कोशिश करें, 'cause they are the part and parcel of our existence।

0: ऑफ पंजाब दे चुटकले कहानियां ते साडियां चटपटियां गल्लां
1: आहो सुनदे यार रोज रेडियो ते
2: सुनो साडे YouTube चैनल कल्चर ऑफ पंजाब ते
3: ओ बाकी जो मर्जी हुंदा होर वेबरे पर गाल नहीं कढ़नी।
4: कई बार ढेर सारी बातें दबी रहती हैं जहन में, कई सारे सवाल जिनके जवाब सिर्फ और सिर्फ उस इंसान के पास हैं, उस खास इंसान के पास। पर होता यूं है कि कई बार हालात, कई बार जज्बात, बहुत कुछ कहना चाहते हैं हम, पर ये दोनों चीजें कहने नहीं देती। कहना तो बहुत कुछ चाहते थे उन्हें, मगर इस जुबान ने कहने ना दिया। कभी वक्त की खामोशी में खामोश रहे हम, तो कभी उनकी खामोशी ने कहने ना दिया।

न हौसला न इरादे बदल रहे हैं लोग, थके थके से हैं फिर भी चल रहे हैं लोग, न वफा न किरदार न उसूल कोई, न जाने कौन से सांचे में ढल रहे हैं लोग। वाकई में इन चंद लाइंस में सच्चाई है। द हार्श रियलिटी ऑफ टुडेज़ सिनेरियो इज हिडन। अंदर बहुत कुछ दफन है पर बाहर नजर नहीं आता, क्योंकि मुखौटे जो लगाकर घूमते हैं हम लोग। चले बातें तो बहुत सी होती रहेंगी, एंजॉय करते हैं ये अगला ट्रैक पहले।

0: ऑफ पंजाब दे चुटकले कहानियां ते साडियां चटपटियां गल्लां
1: आहो सुनदे यार रोज रेडियो ते
2: सुनो साडे YouTube चैनल कल्चर ऑफ पंजाब ते।

थोड़ा थोड़ा मीह पिया ओनू छूनू जी पिया, थोड़ा थोड़ा मीह पिया ओनू छूनू जी पिया, मेरे कोलो लंगा फकीर एक कहना छड़ इश्क विच की।

ताज महल ते ताज महल नू कोई नहीं छड़दा ते ताज महल नू कोई नहीं छड़दा जे मिलदा होवे मंगे तो जे कपड़े दी कोई कीमत पुछे पुछे फिर किसे नंगे तो सुन के ओदी आवाज सुता रब उठ गया मंजे तो ते फिर मेरी की औकात उत्तों काली रात ओनू मैं भी चंगा लग्या क्या बात है फिर दोवां ने अपनिया अपनिया धड़कना वधारियां एक मिली मैनू अफसरा कन्ना दे विच वालियां जुल्फां कालियां कालियां अखां नीलियां नीलियां पता नहीं किधरों पहाड़ियां गोरा गोरा चामी जिवें ठंड च रामी

जिंदगी को सही तरीके से जीना है, जो सलीका है सबका इंडिविजुअल होता है, पर मैं ये मानती हूँ कि कभी गुजरे हुए वक्त को उलट कर देखो, आगे बढ़ना है तो पीछे पलट कर ना देखो। खूबसूरत सी नजर आती है ये दुनिया यूं तो, देखना है तो जरा नकाब उलट कर देखो। एंड फाइनली अपने वादों के अल्फाजों को ना भूलो कभी, और कहीं भूल जाने का अगर खौफ है तो उन्हें रट कर देखो।